0: के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चलें?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
9: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
9: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
9: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
0: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
1: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
0: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
1: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
1: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक

0: आइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
4: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
4: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
4: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
6: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
10: बोलिए मुझे जीजा जी।
11: क्या जी?
10: क्या आपने लगाई PNG?
11: हाँ जी।
10: क्यों जी?
11: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
10: और सेफ्टी
11: की चिंता स्टॉप,
10: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
11: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा। भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
12: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
13: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
12: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
13: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
12: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
14: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
15: अरे इसमें क्या है?
14: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
15: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
14: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
15: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
14: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
15: इनका एड्रेस क्या है?
14: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
0: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
0: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग भिवाड़ी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर हो ही गया है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुराफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी मैं सुबह 8 से 10 के इस प्यारे से सफर के सफरनामे में आता हूँ ना, तब भाई साहब कुछ मस्ती और मजाक वाली बातें भी लेकर आता हूँ, कुछ भिवाड़ी शहर से जुड़ी बातें भी लेकर आता हूँ। लेकिन भाई साहब, आज तो हमारे साथ में बहुत ही प्यारे से मेहमान भी होंगे, लेकिन अभी थोड़ी बताऊंगा भाई साहब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल थोड़ा सा मीठा होता है और यश तो फल में शक्कर मिलाकर ही देता है। तो बस भाई साहब, अब यहाँ से पूरे 2 घंटे यानी कि 10 बजे तक हम मस्ती और मजाक करेंगे आपके घर से ऑफिस तक के सफर को, खास बनाएंगे, बिंदास बनाएंगे, चटपटा सा नमकीन सा बनाएंगे। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ट्यून इन करके रखना है अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश, यू गया और यू आया। भाई साहब, सुबह का टाइम है तो चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा यू ही

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। Armorzen, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपके

जी हाँ, गुड मॉर्निंग बिवाड़ी। नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बात लेकर आता है, लेकिन जैसे ही बिवाड़ी की सड़कों की बात आ जाती है ना, तो दिल करता है बस घर से बाहर ही ना निकलूं। यार कल तो ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसा ना मैं। भाई साहब, गया हुआ था भिवाड़ी मोड़, और भिवाड़ी मोड़ से लेकर के सेंट्रल मार्केट तक का सफर तय करने में मुझे पूरे 32 मिनट लग गए। बताओ यार, मतलब आधे किलोमीटर यानी कि 500,000 मीटर की दूरी पर ही हमें 32 मिनट का सामना करना पड़ गया। लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई साहब एक तरफ की सड़क तो उखड़ी डली है, तो कह भी क्या सकते हैं। लेकिन अब भाई साहब, जो ट्रैफिक जाम लग रहा है और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, रेड लाइट नहीं है, इन सारी चीजों पर बातें करने के लिए हम अपने साथ में ट्रैफिक पुलिस को लेकर आए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हम सर को अपने साथ में लेकर आएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये सड़क कब तक बन जाएगी, या फिर जब तक सड़क नहीं बनती है और हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो किस तरीके से हमें सजा दी जाएगी, कैसे हमारा चालान किया जाएगा, किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किन किन चीजों का इस बढ़ते ट्रैफिक में हमें ध्यान देना है। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो भाई साहब, रूल्स आपको समझना जरूरी है, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, अगर चालान से बचना हो तो अब जरूर हमें सुनते रहना। बहरहाल यहाँ पर आपको शुरुआत हो एक प्यारा सा गाना, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक पुलिस ने हमसे क्या कहा। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को। यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए प्यारे से यश का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: तो दोस्तों, वैसे तो भिवाड़ी में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है ना, वो है ट्रैफिक वाली। जी हाँ, ट्रैफिक जाम ऐसे लग जाता है ना कि समझ ही नहीं आता क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं। और भाई साहब, कल जो मुझे 32 मिनट का टाइम लगा है ना, तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज आई कि आइए चल करके पूछते हैं ट्रैफिक पुलिस से कि आखिर ये सारी चीजें कब तक सुलझ सकती हैं, सुधर सकती हैं। तो भाई साहब, मैं सीधे पहुंच गया भिवाड़ी मोड़ पर, जहां पर मैंने ट्रैफिक पुलिस से बात की। तो सर, सबसे पहले तो जो मेरे लाखों लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा उन्हें आप अपना इंट्रो खुद दें।
12: सर शेर सिंह हेड कांस्टेबल।
11: तो दोस्तों हमारे साथ में है ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल शेर सिंह सर। तो सर वैसे तो हमारे भिवाड़ी वासियों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कम से कम सड़कें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो इस सड़क बनने की वजह से ये ट्रैफिक जाम लग रहा है, इसमें भिवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस को कितनी कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
12: इसमें सर ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों रोड सारा खोदा हुआ है
13: जी।
12: इसमें जाम इतना लगता है जो सुबह से शाम तक हालत खराब हो जाती है और रोंग साइड से बहुत व्हीकल आते हैं, जिनको समझाया जाता है और नहीं समझते उनका चालान भी किया जाता है सर रोंग साइड का।
11: तो भाई साहब आपने सुना, शेर सिंह सर ने बताया है कि बहुत मेहनत और मशक्कत तो करनी ही पड़ रही है, साथ में जो नियमों का उल्लंघन करता है यानी कि जो रोंग साइड से आता है, जो विदाउट हेलमेट आता है, तो उनका चालान भी वो करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये उनकी ड्यूटी है। चलिए बहरहाल शेर सिंह सर से बातें यूं ही रहेगी जारी, चर्चा यूं ही रहेगी जारी, आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शहर का नंबर वन रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: जो मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जो मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जानी, ये पल्ले बन मेरी, वो होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है। मैं प्यार हां तेरा, तवाइफ नहीं तेरी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174 आज ही, अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
12: लो जी हम फिर आ गए हैं। और कर क्या रहे हैं? अरे हम कर रहे हैं हेड कांस्टेबल शेर सिंह सर से बातें। और क्या? तो सर इसी कड़ी में मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। भिवाड़ी का सौंदर्यीकरण चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। भिवाड़ी की सड़कें भी बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर इन्हीं बनती सड़कों के साथ में रेड लाइट की व्यवस्था करवा दी जाए, इसी चलते सौंदर्यीकरण के साथ में रेड लाइट के साथ साथ कैमरे की व्यवस्था करवा दी जाए, तो इससे कितना ज्यादा असर पड़ सकता है ट्रैफिक पुलिस पर और कितना ज्यादा फायदा हो सकता है ट्रैफिक पुलिस को, कितनी मेहनत बच सकती है ट्रैफिक पुलिस की, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर।
13: सर यदि रेड लाइट की व्यवस्था हो जाए तो इसमें तो सोने पे सुहागा है, बहुत फायदा मिलेगा आम जनता को भी पुलिस को भी।
12: वैसे तो सर रेड लाइट के बारे में हम बहुत ढेर सारी सालों से सुन रहे हैं कि भिवाड़ी शहर के अंदर नहीं है। एक वक्त था जब थी और लोग कहते हैं कि उन्हें उखाड़ दिया गया है, मतलब लोगों के द्वारा उखाड़ दिया गया है या प्रशासन के द्वारा नहीं पता, लेकिन रेड लाइट के खंभे कुछ लगे हुए थे वो उखड़े पड़े हैं, इसलिए रेड लाइट नहीं लग पा रही है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर भिवाड़ी के हर चौराहों पर रेड लाइट की व्यवस्था हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस को कितनी सुकून की राहत, कितनी सुकून भरी सांसें लेने को मिल सकती है।
13: यदि रेड लाइट सर लग जाए तो उसमें पुलिस को आधी मेहनत करनी पड़ती है और यातायात भी सुगम चलेगा, आम पब्लिक को फायदा भी मिलेगा, सहूलियत भी होगी, कोई कष्ट परेशानी नहीं आएगी सर।
12: क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल ही दिल जीत लिया सर एकदम ही आपने। मतलब सर को भी पता है कि भाई साहब अगर रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग जैसी व्यवस्था हो जाती है तो भाई साहब ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ हमारी आम पब्लिक को भी बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत फायदा होगा और साथ में ट्रैफिक जाम से भी हम बच सकेंगे। तो सर को तो ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कब तक आती है ये देखना बाकी है। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8432668 पर बस फोन उठाइए, कॉल लगाइए। फिलहाल सर से चर्चा यूं ही रहेगी जारी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर

0: में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड भिवाड़ी।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: और भाई, हंजी की शिकंजी कैसे बन रही है? जी हाँ, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में मस्ती और मजाक वाली बातें तो लेकर आता ही है, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथ में लेकर आता है।
10: अरे अंकल, अंकल मेरी बात कर रहे हो क्या? मेरी बात कर रहे हो क्या?
9: ना।
10: अरे हाँ।
9: हाँ चिंटू बेटे, आपकी बात कर रहे थे। अच्छा, आज चुटकुला नहीं सुनाओगे क्या?
10: अरे अंकल, क्यों नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, मजेदार से सुनाऊंगा।
9: अच्छा, मजेदार से चुटकुला सुनाओगे, चलो फिर आज सुना ही दो, क्या सुनाने वाले हो?
10: अरे अंकल, फिर वही बात, दाल चावल थोड़ी हो के क्या खिलाने वाले हो, चुटकुला है, फनी सुनाऊंगा ना।
9: ठीक है भाई, फनी चुटकुला ही सुना दो, कौन सा सुना रहा हो, चलो ये तो बताओ।
10: अरे अंकल सुन लो, तब पता चल जाएगा आपको।
9: ठीक है फिर शुरू करो।
10: अरे अंकल, अंकल मुझे आज ही पता चला कि मेरे क्लासरूम की छत पे इतना मकर जाला लगा हुआ है।
9: अरे वो कैसे?
10: अरे अंकल क्या बताऊं, आज मेरी परीक्षा थी ना इसलिए।
9: अरे तो ये मकर जाले साफ करने की कौन सी परीक्षा थी?
10: अरे अंकल वो पेपर थोड़ा ज्यादा कठिन था ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ना मैं हर बार ऊपर देख रहा था और जाला ही दिख गया।

समझ में आया आप लोगों को चिंटू भाई का चुटकुला? चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चिंटू भाई कह रहा है कि जब परीक्षा में कठिन पेपर आता है ना, तभी मालूम पड़ता है कि परीक्षा कक्ष की छत में कितने जाले हैं, कहाँ कहाँ प्लास्टिक उखड़ा हुआ है और दीवारें कहाँ कहाँ उखड़ी हुई है। क्योंकि भाई जब पेपर कठिन होता है तो फिर कुछ समझ तो आता नहीं है, फिर सिर्फ हम ऊपर देखते हैं जिसमें हमें छत दिखाई देती है और सारी चीजें पता चल जाती है। अरे यहाँ पर तो जाला था, अरे यहाँ पर तो प्लास्टर उखड़ा पड़ा था। खैर चिंटू भाई, बड़ा ही मजेदार सा चुटकुला था, बड़ा ही अच्छा चुटकुला था। इन लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक लगा। चलिए बहरहाल इन्हें सुनवाते एक प्यारा सा गाना, कहीं मजा ही सुनते रहिए। शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाए 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 123 4494 या 9980 40100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
6: मतलब
5: एक्स्ट्रा खर्चा।

0: सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
0: अरे नहीं नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
2: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
3: अरे इसमें क्या है?
2: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
3: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
2: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
3: इनका एड्रेस क्या है?
2: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: और भाई आपको क्या लगा कि आज यश रेडियो पर है और यश के पास कोई प्यारी सी रिक्वेस्ट नहीं है? अरे साहब गलत सोच रहे थे। जी हाँ नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका रेडियो दोस्त यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों तो लेकर आता ही है, लेकिन साहब साथ में लेकर आता है बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट को। और रिक्वेस्ट पता है किस गाने की है? हाय ये गाना तो सीधे दिल को छू कर जाता है। चलिए थोड़ा बहुत तो गुनगुना के बता ही देता हूँ। हालांकि मानता हूँ कि मैं बहुत गंदा गुनगुनाता भी हूँ, लेकिन साहब रेडियो पर तो मैं हूँ ना तो गुनगुना के तो सुनाऊंगा। दोस्तों गाना कुछ ऐसा है कि

तेनो रब ने बनाया। यही गाना है, यही प्यारी सी रिक्वेस्ट है, बड़ा ही प्यारा सा गाना है दोस्तों। और ये रिक्वेस्ट भी बड़ी ही प्यारी सी और बड़ी ही दूर की है। ये रिक्वेस्ट है अंजलि जी की। अंजलि जी का कहना है कि भाई ये गाना उन्हें दिल से अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा ये गाना लगता है, मतलब उनके दिन की शुरुआत ही इस गाने को सुनकर होती है। और दोपहर में कम से कम 20 बार इस गाने को वो सुन लेती है। तो वो मुझे सुन रही थी रेडियो पर और उन्होंने कहा कि भाई हमने सोचा कि क्यों ना आज हम भी अपनी अर्जी लगाए, शायद पूरी होती है या नहीं। तो मैंने कहा मैम बिल्कुल आपकी भी अर्जी पूरी होगी और जो भी फरमाइशें करता है उन सबकी अर्जियां पूरी होती है। मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि अपने मन का गाना प्ले कर पाए तो बस भाई फोन उठाइए, कॉल लगाइए, यश हाजिर है ना आपकी सेवा में। बहरहाल पहले एंजॉय करते इस प्यारे से गाने को। आंखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। जी एंजॉय कीजिए इस गाने को। मैं यू गया और यू आ लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। कहीं मजा ही सुनते रहिए शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 34।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
3: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
4: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
5: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
4: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
6: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
7: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
1: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
7: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
1: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: और दोस्तों, अब हम चलते हैं, हो सके तो हमें दुआओं में याद रखना। जी हाँ, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बहुत ही ढेर सारी बातों का शोर लेकर आता है। लेकिन साहब, अब वक्त हो चला है वो जिसका ना तो मुझे था इंतजार और ना ही आपको था इंतजार, यानी कि यश की अब वो बातें आ चुकी हैं जो आपसे नहीं करेगा। जस्ट किडिंग यार, मतलब अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे कहूंगा टाटा। हाँ भाई ठीक चल भवाड़ी। चुकी अब भाई साहब 2 घंटे मुझे और आपसे बातें करते करते हो चुका है, तो अब आप लोग भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और मुझे विदा कीजिए। खैर मैं तो विदा हो ही जाऊंगा, आप लोग कहीं मत जाइए। अब सिर्फ आपको सुनना है यहाँ पर प्यारे प्यारे से गाने, सुनते रहिए शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 34। टाटा बाय बाय, ठीक चल भवाड़ी।

0: गया।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
5: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
6: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
5: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: अरे भाई क्या हुआ?
4: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
3: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
4: कॉल करें 9257036191।
5: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
6: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 और मैं हूं आपके साथ आरजे साहिल, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। हेलो भिवाड़ी में हम बात करते हैं भिवाड़ी के बारे में। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी और हमारी छोटी छोटी आदतों के बारे में। हम अक्सर कहते हैं कि शहर अच्छा नहीं है और सिस्टम ठीक नहीं है और लोग सही नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम क्या कर रहे हैं? दोस्तों सुबह उठते ही मोबाइल देखना, देर तक जागना, बाहर का खाना पीना, या सब हमारी सेहत को धीरे धीरे खराब कर देता है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर शरीर ठीक ही नहीं होगा तो ना काम में मन लगेगा, ना घर में खुशियाँ रहेगी, और आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
2: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता, जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावलो, हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरी यानी आरजे साहिल के साथ, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। दोस्तों अब जरा अपने शहर की बात करते हैं। हम सड़क पर चलते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं और फिर कहते हैं नगर पालिका कुछ नहीं करती है। दोस्तों सफाई की शुरुआत हमारे घर और हम से होती है। अगर हर इंसान अपने सेहत की जिम्मेदारी समझ ले तो शहर अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर। अभी

0: आज ही संपर्क करें। हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
1: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 and 9784333863।
2: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
4: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
4: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
5: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी ओनली ऑन 90.8 FM 24 पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने भिवाड़ी की ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक की समस्या भी हम सब जानते हैं, सुबह शाम तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। ये सब हमारी ही वजह से ट्रैफिक लगता है, क्योंकि हम रेड लाइन को तोड़कर निकल जाते हैं, या बिगर हेलमेट पहनकर बाइक चलाना, बिगर सीट बेल्ट कर कार चलाना, और जब चालान काटते हैं तो गुस्सा सिस्टम पर करते हैं। याद रखे दोस्तों, नियम हमारी सुरक्षा के लिए होता है, सजा देने के लिए नहीं। और हम तो अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि कार में है तो सीट बेल्ट लगा कर चलें, और बाइक पे है तो हेलमेट पहन कर चलें। और आगे हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जल्द लौटेंगे, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01 49 34 93 222 या फिर 9034 9697 31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
8: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
7: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
8: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
7: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस इंश्योरेंस, कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी ओनली ऑन 90.8 FM 24 पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिश्तों की। आजकल हम अपनों के साथ बैठकर बात करने के बजाय मोबाइल से ज्यादा वक्त बिताते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सब एक ही घर में होते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप दिन में बस 10 मिनट अपनों के साथ दिल से बात कर लें तो यकीन मानिए जिंदगी आसान लगने लगती है। दोस्तों, बदलाव किसी बड़े आंदोलन से नहीं आता, बदलाव आता है हमसे। आज अगर आप तय कर लें कि गंदगी ना फैलाएं और ट्रैफिक का नियम मानें और अपने सेहत का ध्यान रखें और अपनों को समय दें, तो दोस्तों समझ लीजिए आपने समाज को बहुत कुछ दे दिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ। और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी, और हेलो भिवाड़ी शो में हम किसी न किसी मेहमान को जोड़ते रहते हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल को, लेकर आया हूँ पवन कुमार जी को। सबसे पहले आपका स्वागत है सर 90.8 FM 24 पर।
11: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
10: सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भिवाड़ी मोड पर बढ़ता ट्रैफिक, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम का कितना सामना करना पड़ता है?
11: सर, भिवाड़ी मोड पे ट्रैफिक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, और बगैर बत्तियों के, रेड बत्ती के बगैर बड़ी दिक्कत होती है। ड्राइवरों को भी दिक्कत होती है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिक्कत होती है, जनता को भी दिक्कत होती है। तो यहाँ लाल बत्ती होना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक इंडस्ट्रीज एरिया होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, और व्यवस्थित ट्रैफिक नहीं है बत्तियों की वजह से। मेरा तो मानना यही है कि यहाँ बत्ती व्यवस्था हो जाए तो ट्रैफिक सुचारू रहे, पैदल यात्रियों को दिक्कत नहीं आए। रोड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है पैदल यात्रियों को, अगर बत्ती लग जाए चौराहे पे तो बहुत अच्छा काम हो जाए।
10: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
6: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
8: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
9: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
10: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135, भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
12: बोलिए मुझे जीजा जी।
13: क्या जी?
12: क्या आपने लगाई PNG?
13: हाँ जी।
12: क्यों जी?
13: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
12: और सेफ्टी
13: की चिंता स्टॉप,
12: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
13: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
12: हाँ जी,
13: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
12: बिल्कुल सही।
13: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
14: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
15: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
14: अच्छा, और उसमें क्या, खर्चे ही खर्चे।
15: अरे नहीं नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
14: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
16: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
17: अरे इसमें क्या है?
16: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
17: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
16: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
17: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
16: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
17: इनका एड्रेस क्या है?
16: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
18: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। और हाँ दोस्तों, अपने शहर को अपने घर समझ लीजिए, गंदगी ना फैलाएं, ट्रैफिक का नियम का पालन करें और एक दूसरे की मदद करें। छोटी छोटी अच्छी आदत मिलकर बड़ा बदलाव लेती है। इस सोच के साथ और बने रहे हमारे साथ, सुनते रहे आपका अपना FM 90.8 FM 24, और मैं हूँ आपके साथ आरजे साहिल। और अब लेते हैं आपसे, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
6: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
2: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
1: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
2: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
1: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है। सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल।

0: 8128449 Bhagat Singh Colony, Bhiwadi. 8529113916 7340013916 इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 0149379 6907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
4: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
4: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
4: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
4: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
4: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
4: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
6: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
5: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
6: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आचरण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900। क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मानो भगवान ने अपने टैलेंट के पिटारे से निकली हुई पूरी की पूरी पोटली उन्हीं के ऊपर उड़ेल दी हो। और अब तक आप शायद गैस करना शुरू भी कर चुके होंगे। और इससे पहले कि आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचे, आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं निशांत खुराना उर्फ आयुष्मान खुराना की। अब निशांत खुराना, ये क्या मिस्ट्री है भाई? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई मिस्ट्री नहीं है। असल में जब आयुष्मान पैदा हुए थे तब उनका नाम निशांत खुराना था, जिसे बाद में आयुष्मान खुराना कर दिया गया था। वैसे इनके नाम में एक और बार फेरबदल हुआ था, लेकिन ये फेरबदल सिर्फ आयुष्मान के नाम की स्पेलिंग में हुआ था जी। और उसके पीछे का कारण ये था कि आयुष्मान खुराना के पिता का मानना था कि आयुष्मान के नाम की स्पेलिंग को बदलने से उनका भाग्य, जो कि पहले से ही अच्छा है, वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, भाग्य तो आयुष्मान खुराना अपने साथ लेकर के ही पैदा हुए थे, तभी तो इतने ज्यादा टैलेंटेड। चलिए दोस्तों, बताएंगे आपको आयुष्मान खुराना के टैलेंट और उनके करियर से जुड़ी हुई तमाम सारी बातों को और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और इंतजार की इन घड़ियों में छोड़े जाते हैं आपके लिए आयुष्मान खुराना का एक बेहतरीन सा गाना जो उन्होंने अभी रिसेंटली गाया है। और दोस्तों, ये गाना भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, इस मूवी को तो आपने देखा ही होगा, तो इसी मूवी का गाना है आयुष्मान खुराना की आवाज में। इस गाने को सुनिए, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहां उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावरू हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
13: एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका 90.8 FM 24 पर, और शो चल रहा है बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों बातें हो रही थी आयुष्मान खुराना की, और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, आयुष्मान खुराना का नाम मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्टों में गिना जाता है। एक्टर आयुष्मान खुराना इंडियन टेलीविजन के एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। आईफा हो या फिर फिल्म फेयर अवार्ड या फिर टेलीविजन का कोई अवार्ड शो, हर जगह आपको आयुष्मान खुराना की एंकरिंग देखने को मिल ही जाएगी। और दोस्तों बात करें अगर सिंगिंग की, तो दोस्तों इनकी फर्स्ट फिल्म यानी की डेब्यू फिल्म साल 2012 में सुजीत सिरकर के निर्देशन में बनी विक्की डोनर में मुख्य किरदार के साथ सिंगिंग का भी इन्होंने अपना हुनर दिखाया था। आयुष्मान का गाया हुआ गाना काफी ज्यादा पसंद किया गया और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट रही। वैसे दोस्तों ये डेब्यू केवल आयुष्मान खुराना के लिए नहीं था, बल्कि इस फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम ने निर्माता के रूप में डेब्यू किया था। दोस्तों फिल्म के विषय की बात करें तो फिल्म का विषय थोड़ा सा अलग जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो कि लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया। शायद इसीलिए फिल्म हिट रही। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने विक्की अरोरा का किरदार निभाया था, जो कि एक स्पर्म डोनर होता है और वह एक बंगाली लड़की से शादी कर लेता है। बंगाली लड़की के किरदार में उनकी सह अभिनेत्री यामी गौतम रहती हैं। और दोस्तों खास बात ये कि फिल्म बहुत ही कम बजट में बनी थी, बावजूद इसके फिल्म ने व्यावसायिक रूप से काफी ज्यादा कमाई की। खैर दोस्तों अभी आपको सुनवाते इस फिल्म में आयुष्मान खुराना का गाया हुआ वो गाना जो लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया और लड़कियां उनकी फैन हो गई, जी गाने की भी और उनकी एक्टिंग की भी। फिलहाल दोस्तों आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चलें?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है।

0: है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
1: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
2: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, वोक, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
2: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
1: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
3: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और शो चल रहा है आरजे सनी के साथ बॉलीवुड कैफे, आपका वही पुराना शो जिसमें हम बात करते हैं फिल्मी कलाकारों के बारे में। वैसे दोस्तों हम लोग आयुष्मान खुराना की बातें कर रहे थे और इनके फिल्मी करियर की तो हमने कुछ बातें आपसे की, इनकी फर्स्ट फिल्म यानी कि डेब्यू फिल्म के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब चलिए हम चलते हैं जरा इनकी पर्सनल लाइफ की ओर यानी कि इनकी निजी जिंदगी की ओर। वैसे दोस्तों आयुष्मान रहने वाले तो चंडीगढ़ के थे, लेकिन इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और अगर बात करें इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की, तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने सेंट जोन्स हाई स्कूल से की, और इसके बाद फिर वो DAV कॉलेज चंडीगढ़ में अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई करने लग गए। और फिर दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। अब मास कम्युनिकेशन किया है तो फिर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी एक और फील्ड डेवलप होती है, जी रेडियो जॉकी की। फिलहाल दोस्तों आपको बताएंगे कि रेडियो जॉकी कैसे बने और किस रेडियो चैनल के रेडियो जॉकी रहे और कितने दिन तक रहे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको इनके शुरुआती दिनों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों आयुष्मान जब स्कूल में थे तब वे स्कूल में होने वाले स्टेज शो में हिस्सा लिया करते थे और उसमें वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कई बार कह चुका हूँ, बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, अभिनेता बनना चाहते थे और इसकी उन्हें प्रेरणा अपनी दादी से मिली थी जो कि राज कपूर और दिलीप कुमार की मिमिक्री किया करती थी। जब आयुष्मान 5 साल के थे तब वे अपने माता पिता के साथ पहली बार थिएटर गए, जहां पर उन्होंने माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब देखी। इस समय आयुष्मान ने अभिनेता बनने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद आयुष्मान अपने अभिनय कौशल को बढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर में शामिल हो गए और फिर वे DAV कॉलेज के आगाज और साथ ही साथ मंच तंत्र के संस्थापक सदस्यों में एक बन गए। और जिसके बारे में शायद आपको पता हो, चंडीगढ़ में सक्रिय थिएटर समूह है। आयुष्मान ने कई नुक्कड़ नाटकों में भी हिस्सा लिया और अभिनय किया। खैर दोस्तों बात करेंगे इनके करियर की भी, लेकिन अभी एक बढ़िया सा गाना बनता है, इस गाने को सुनिए। वापस लौटते 90.8 FM 24 पर, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब

0: टायर लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि आयुष्मान को बचपन से ही अभिनेता बनने का शौक था और इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी दादी से मिली थी, जो कि मिमिक्री किया करती थी, और शायद इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। लेकिन टैलेंट के होने के बावजूद सभी ऑडिशंस में रिमार्क्स के साथ रिजेक्ट होते चले जाते थे। इसका कारण क्या था? दोस्तों, इसका कारण था उनकी मोटी आईब्रो और उनका पंजाबी लहजा। दोस्तों, आयुष्मान ने अपने करियर की शुरुआत करने से पहले एक आरजे के रूप में काम भी किया था, जी, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया। तो चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि किस रेडियो स्टेशन के आरजे बने थे आयुष्मान खुराना। दोस्तों, इन्होंने अपनी पहली नौकरी रेडियो जॉकी के तौर पर बिग FM दिल्ली में की थी। और अगर बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत MTV के मशहूर शो, जो उन दिनों काफी पॉपुलर था, रोडीज 2, इस शो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और जिसमें वो विजेता भी रहे थे। रेडियो के बाद वीडियो जॉकी भी बने थे आयुष्मान खुराना। उन्होंने बहुत सारे शो का संचालन किया और इसके बाद का सफर तो आपको पता ही है दोस्तों। विक्की डोनर फिल्म से इन्होंने अपने करियर की एक लंबी छलांग लगाई। वैसे दोस्तों, करियर के साथ साथ इनके पर्सनल रिलेशन के बारे में

पुराना का एक और बढ़िया सा गाना सुनवाते चलते हैं, सड्डी गली। और दोस्तों ये गाना आयुष्मान खुराना की आवाज में नौटंकी साला फिल्म का है। इस गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
2: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वही।

0: तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
0: मतलब
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम,
0: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
2: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
3: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
4: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
0: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे 90.8 FM 24 पर, RJ सनी के साथ। दोस्तों, जैसा कि म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको आयुष्मान खुराना की पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आयुष्मान खुराना की फैमिली के बारे में बात करें तो उनके पिता एक बहुत ही फेमस ज्योतिषी हैं और उन्होंने ज्योतिषी के विषय पर बहुत सारी प्रसिद्ध लेख भी लिखे हैं, जबकि माँ एक सिंपल गृहिणी हैं और हिंदी में उन्होंने MA किया है। और इनके भाई अपार शक्ति दिल्ली में 104.8 FM में रेडियो जॉकी हैं, साथ ही वो एक TV स्टार, एंकर और एक्टर भी हैं। आयुष्मान की बचपन में एक बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी जिसका नाम ताहिरा था। हालांकि ये रिश्ता बाद में जाकर के बदल गया। अब रिश्ता कैसे बदला, ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। जी, साल 2011 में आयुष्मान ने अपनी उस खास दोस्त से शादी कर ली और तब से दोनों हैप्पी और लविंग लाइफ बिता रहे हैं। दोस्तों, आयुष्मान के दो बच्चे भी हैं, एक लड़का विराजवीर जिसका जन्म 2 जनवरी साल 2012 में हुआ था, और दूसरी लड़की जिसका नाम वरुष्का जिसका जन्म 21 अप्रैल साल 2014 में हुआ। चलिए दोस्तों, फिलहाल वक्त हो रहा है एक बढ़िया से गाने का, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: एक्शन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
3: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
13: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों वैसे तो समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलिए चलते चलते कुछ एकाध और बातें कर लेते आयुष्मान खुराना के बारे में। लेकिन जो बातें मैं करने जा रहा हूँ शायद उससे आपको थोड़ा सा जेलसी फील हो। जी दोस्तों, आयुष्मान खुराना का जब भी जिक्र होगा एक्टर, गायक, एंकर और साथ ही लेखक के रूप में भी इनकी गिनती गिनी जाएगी। अब लेखक के रूप में ये थोड़ी सी नई बात है, और ये नई बात यूं है कि साल 2015 में आयुष्मान ने अपनी बॉलीवुड करियर के बारे में बताते हुए एक किताब लिखी थी। जी, और ये किताब एक आत्मकथा थी आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, जो उनके संघर्षों से सफलता तक के रास्ते में सारा मंजर बताती है। तो ये तो खैर लड़के ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया, एक आध कैटेगरी बच रही थी उसमें भी इन्होंने अपना नाम दाखिल करवा दिया। चलिए दोस्तों, इतनी तारीफें हम किए जा रहे हैं तो चलिए एक नजर अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं, भाई कौन कौन से अवार्ड्स इन्होंने जीते। एक सेलिब्रिटी बनने से पहले आयुष्मान ने अपने कॉलेज के समय में कई अवार्ड्स जीते थे। उस समय वे नुक्कड़ नाटकों में अभिनय किया करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और जिसके चलते उन्हें नेशनल कॉलेज फेस्टिवल जैसे मूल इंडिगो, आईआईटी बॉम्बे और सेंट बेट्स शिमला में पुरस्कार जीते थे। इसके अलावा आयुष्मान ने धर्मवीर भारती अंधा युग में अश्वत्थामा की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी जीता था। इसके बाद सेलिब्रिटी के रूप में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। साल 2007 में भारत निर्मन अवार्ड्स यंग अचीवर्स में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर कैटेगरी में, और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डेब्यू कैटेगरी में, और साथ ही दोस्तों रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। तो दोस्तों ये थे कुछ अवार्ड्स। वैसे दोस्तों अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है और समय थोड़ा सा कम, तो फिलहाल दोस्तों अभी तो हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। वैसे बताना तो बहुत कुछ चाहते थे आपको आयुष्मान खुराना के बारे में, लेकिन अभी हमें लेना होगा आपसे इजाजत। और आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, आपके लिए छोड़े जाते हैं एक बढ़िया सा गाना। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
6: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
8: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
1: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
8: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
9: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
0: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co. in आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
0: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
0: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
0: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
1: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और

0: फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए। विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लालनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया, कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
5: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 123 4494 या 9983040100 पर।

0: बाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
1: बोलिए मुझे जीजा जी।
2: क्या जी?
1: क्या आपने लगाई PNG?
2: हाँ जी।
1: क्यों जी?
2: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
1: और सेफ्टी
2: की चिंता स्टॉप
1: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
2: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
1: हाँ जी
2: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
1: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
2: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
1: बिल्कुल सही।
2: तो आप भी अपनाओ PNG
1: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
3: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
4: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
3: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
4: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
3: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
5: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
6: अरे इसमें क्या है?
5: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
6: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
5: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
6: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
5: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
6: इनका एड्रेस क्या है?
5: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF Rapid 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
1: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
2: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
1: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
3: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
5: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
4: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
5: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
6: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का 90.8 FM 24 पर। मैं हूँ आपके साथ आरजे भावना और हाजिर हो चुकी हूँ लेकर आप सभी का पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान के, राजस्थान यानी राजाओं का स्थान भी कहते हैं कि ये राजपूत राजाओं की रक्षित भूमि थी, इसलिए इस राज्य का नाम राजस्थान पड़ गया। ये राज्य राजपूताना शानो शौकत और सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। हालांकि अगर इसके इतिहास पर नजर डाले तो राज्य को पहचान दिलाने के लिए यहाँ की महिलाओं का भी अहम रोल है। अतीत में कुछ ऐसी साहसी महिलाओं के कारण दुनिया भर में राजस्थान की मिट्टी को पहचान मिली। इन महिलाओं ने अपने साहस और बलिदान से सब पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिन्हें लोग आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। कौन थी वो बहादुर महिलाएं जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान बनाया, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल शो की शुरुआत कर दें एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक के साथ। सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
10: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की बहादुर महिलाओं के बारे में, जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान बनाया। तो उन्हीं बहादुर महिलाओं में से एक बहादुर महिला थी महारानी गायत्री देवी। 23 मई 1919 को लंदन में जन्मी गायत्री देवी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। मैगजीन द्वारा उन्हें दुनिया का टॉप 10 सुंदर महिलाओं में भी शामिल किया। वो सिर्फ जयपुर की महारानी नहीं थी बल्कि पॉलिटिशियन भी थी। गायत्री देवी ने अपने साही लाइफस्टाइल और दबंग अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। गायत्री महारानी और भी राजस्थान की वीर महिलाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
2: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चलें?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 and 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
2: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
8: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
2: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
8: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
2: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
1: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और चल रहा आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे महारानी गायत्री देवी की, जो राजस्थान की वीरांगनाओं में से एक है। ठीक उसी तरह हाडी रानी को कौन नहीं जानता। मेवाड़ की हाडी रानी ने अपनी मातृभूमि के लिए जो किया उसे आज तक भी नहीं भुलाया जा सकता। 16वीं सदी के दौरान हाडी रानी का विवाह सलुम्बर के राव रतन सिंह के साथ हुआ था। दोनों के विवाह के ठीक एक ही दिन बाद युद्ध ने उनके द्वार पर दस्तक दे दी थी। मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए हाडी रानी ने अपना सिर काट कर सैनिकों को दे दिया था, ताकि उनके पति का ध्यान प्रेम पर नहीं बल्कि मातृभूमि की रक्षा पर हो। इनका भारतीय इतिहास में अनमोल योगदान रहा। राजस्थान की धरती पर और भी शूरवीर वीरांगनाएं मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धरती।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7

0: सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की वीरांगनाओं के बारे में। राजस्थान की वीरांगनाओं में मीराबाई की भी अहम भूमिका है, या फिर यूं कहें कि मीराबाई भी राजस्थान की वीरांगनाओं में से एक है। जानकारी के मुताबिक मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था, जो कि पाली में है। मीराबाई कृष्ण भक्त और कवि कवियात्री थी। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में पागल थी और उन्हें अपना पति मानती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ कर दिया गया। शादी के कुछ वक्त बाद ही पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद लोगों ने उन्हें सती होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीराबाई ने समाज में रूढ़िवाद विचारों को तोड़ते हुए सती होने से इनकार कर दिया। यहाँ तक उन्होंने अपना श्रृंगार तक नहीं उतारा था, क्योंकि वो दिल से मुरली मनोहर को अपना पति मानती थी। घर वालों से भी परेशान होकर मीराबाई ने द्वारिका जाने का निर्णय कर लिया और वहीं कृष्ण भक्ति करने लगी। कहा जाता है कि 1557 में उन्होंने कृष्ण भक्ति करते ही अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। मीराबाई की तरह और भी वीरांगनाओं के बारे में बात करेंगे हम थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वही तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
8: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की वीरांगनाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने फर्ज को निभाते हुए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। ऐसी ही एक महिला पन्ना धाय इतिहास की वो वीरांगना माँ थी, जिन्होंने फर्ज निभाते हुए अपने बेटे तक का बलिदान दे दिया। पन्ना धाय ने अपने जिगर के टुकड़े को मेवाड़ की आन बान शान बचाने के लिए हंसते हंसते नौछावर कर दिया। शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में मानी जाती है। यहाँ की सैकड़ों वीरांगनाओं ने विश्व भर के लिए एक मिसाल कायम की, इसी में से एक है पन्ना धाय। पन्ना धाय राणा सांगा के बेटे उदय सिंह की दाई माँ थी, जिन्हें पन्ना धाय के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उदय सिंह की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी थी। जानकारी के अनुसार पन्ना धाय का जन्म 1490 राजस्थान के पांडोली गांव में हुआ था। माना जाता है कि उन्होंने उदय सिंह को बनवारी के हमले से बचाने के लिए उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को सुला दिया, जिसके बाद बनवारी ने उदय सिंह समझकर उसके पुत्र की हत्या कर दी। यही नहीं, वो उदय सिंह को लेकर काफी दिनों तक कुंभलगढ़ के जंगलों में भी भटकती रही। इन वीरांगनाओं का जीवन चरित्र हमारी नई पीढ़ी के बालक बालिकाओं में आत्मसम्मान की भावना भरम, उनसे सह सम्मान जीने की प्रेरणा देता है। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
10: क्यों जी?
9: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
10: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप,
10: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
9: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
10: हाँ जी
9: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
10: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
10: बिल्कुल सही।
9: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
12: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
12: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
13: सोनम, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
14: अरे इसमें क्या है?
13: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
14: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
13: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
14: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
13: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
14: इनका एड्रेस क्या है?
13: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
1: तो आइए कॉफिया, कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता, अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय, रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: अरे भाई, क्या हुआ?
5: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
4: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
5: कॉल करें 9257036191।
6: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
7: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
7: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 852987।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग भिवाड़ी। जी हाँ, शाम का वो समय जब आपकी और मेरी मीटिंग शुरू हो चुकी है, आप ऑफिस से निकल रहे हो घर जाने के लिए, और शाम को जाते ही वो चाय का जुगाड़ जो आपका घर पे है, इसी के लिए तो खैर आप जा रहे हो, अभी ऑफिस में भी पी थी, अब घर जाके भी पियोगे। चाय का नशा ही कुछ ऐसा होता है, आपको दिन में 3-4 बार मिल जाए तो भी मजे आ जाते हैं। मेरे जैसे कई लोग हैं जो चाय के लिए सच में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ करके मुझे पता चला है कि आज है बहुत लोगों का बर्थडे, तो उन सब के लिए

जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कर दें, बट जिन जिन का भी बर्थडेज है उन सब के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स आए थे जिनमें लोग कह रहे थे कि हमारा बर्थडे है, हमारे बच्चों का आज बर्थडे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ ही विश कर दें। जिन जिन का भी आज बर्थडे है उनको एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे। इसी के साथ या कुछ भी किया हो कल आज, जो भी आज की भसड़ रही हो दिन भर की, कुछ भी शेयर करना हो, कॉल करें हमें 1-8-4-3-2-6-6-5-5-8। आपकी आवाज सुनने के लिए तो हम यहां पे आते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो कहीं ना जाइएगा, अगर आपका थोड़ा सा भी प्लान है फ्रीक्वेंसी चेंज करने का तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। बहुत बढ़िया सारे गाने लगा रखे हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और मस्ती मजाक हंसी खुशी का पिटारा भी है। सुनते रहे 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। शो शुरू हो चुका है इवनिंग टी विद शर्मा जी, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसिस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे डीआर टीएमटी ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टी विद शर्मा जी पे। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। पर अगर भिवाड़ी की जनता की भी कुछ भावनाएं हैं जो वो व्यक्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट अधिकारियों को, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8432-66-5588। अब तक तो ये नंबर आपको याद हो ही गया होगा। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। शो सुनते रहें, क्योंकि यही वो नंबर है जो आपको हर टाइम हेल्प कर सकता है भिवाड़ी से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो या आपको कुछ भी बताना हो। तो अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कोई भी बात बोलनी है, किसी ऑफिसर को बोलनी है, अपने बॉस को बोलनी है, अपने घर में कुछ शेयर करना है या कुछ भी है, इस नंबर पे कॉल करें और हमें बताएं। हम आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आपको कोई गाना सुनना है तो वो तो हमारे लिए, तो हम आपके लिए बढ़िया सा गाना भी चला देंगे। सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
6: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: क्या कर रही है?
8: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
7: फिर से? अभी तो गई थी।
8: हाँ, फिर से जाना है।
7: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
8: गाड़ी नॉट इन बजट।
7: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
8: गांधी मोटर्स?
7: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
8: तो कब चले?
7: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
9: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
10: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
11: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
12: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिन

0: नेशन प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम
1: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स
0: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन शाम की

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टी विद शर्मा जी में, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। और जैसा मैंने आपसे शो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी की बात करेंगे, सर गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग।
1: तो सर मेरा आज का जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हम आजकल टेक्नोलॉजी के युग में हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, तो मेरा मेन फोकस आज की डेट में रहेगा साइबर रिलेटेड क्राइम्स के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान पुलिस और इंडियन पुलिस उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है, तो उन्हीं से रिलेटेड मेरे कुछ सवाल रहेंगे। इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये साइबर फ्रॉड होता क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में जानना चाहूं तो।
2: साइबर फ्रॉड जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो उसके थ्रू यदि हमारा कोई बैंक अकाउंट का पैसा निकाल ले, किसी तरह का हमारा डेटा है वो यूज कर ले अपने पर्पस के लिए, खासकर फिनेंशियल बेनिफिट के लिए करते हैं, या किसी तरह का दुर्भावना पहुंचाने के लिए करते हैं, तो मल्टीपल चीज होता है जिसमें जिसका डेटा चुराया जाता है, लिया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसमें ये कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज होता है।
1: ओके, तो हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है उनकी हेल्प से अगर किसी को भी तकलीफ पहुंचाई जा सके, उसके फाइनेंशियल लॉस करा जा सके या उसको मेंटल हरासमेंट करा जा सके, उसको हम साइबर फ्रॉड के तहत मानेंगे। सर मेरा अब आपसे दूसरा सवाल कि इन साइबर फ्रॉड से मैं अपने अकाउंट्स को, यानी बैंक अकाउंट्स को, अपने कार्ड्स को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मेरे पास जो भी चीजें हैं, उनको मैं कैसे बचा सकता हूं अपने आप को?
2: देखिए, इसमें कुछ चीज है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला चीज है जो आप जो पर्सनल डेटा है, आपका नाम हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, ओटीपी हुआ, पासवर्ड हुआ, इसको आप प्रोटेक्ट रखें। कोई भी बैंक वाला, कोई भी एटीएम वाला, कोई भी आपसे ये डेटा नहीं मांगेगा। तो कभी भी किसी तरह का कॉल आता है जो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको ये चीज बताना है, खासकर ये अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो आप नहीं बताएं। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है। जब आप एटीएम में जा रहे हैं तब आप इंश्योर करें जो दूसरा कोई एटीएम में साथ ना घुसे, जिसको आप जानते नहीं है।
1: ओके।
2: तीसरा चीज है, जब आप पासवर्ड डाल रहे हैं तो आप अपने हाथ ऊपर रख के पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं।
1: तो भिवाड़ी, जैसा आपने सुना कि ये बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, हम ध्यान रखें हमारी सराउंडिंग का जब भी हम एटीएम में जाएं, इन सब तरीकों से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं। अब लिए चलता हूं आपको बहुत ही जोरदार गानों के पास, सुनते रहे 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन जी। और हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सेफ्टी की, कहीं ना जाइएगा।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
6: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
6: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
9: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
8: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
10: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
11: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
12: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
13: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
14: शाम

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। शो का नाम है इवनिंग डेविड शर्मा जी, रहे हैं साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स की। सर, जैसा मैं आपसे पहले भी साइबर फ्रॉड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई बार लोगों के पास कॉल आते हैं कि हम आपकी ये लॉटरी लग गई है, या हम लोन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं फलाना फलाना बैंक के, या आपके लिए कुछ बेनिफिट हैं। तो ऐसे कॉल्स को हमें कैसे अटेंड करना चाहिए, और हम कैसे पता लगाएं कि ये कॉल सही नहीं है, या ये गलत कॉल है, या ये सस्पिशियस कॉल है, हमें इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए? क्या बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए?
1: देखिए, जो बेसिक चीज होता है जब कोई कॉल करता है, तो वो आपको जब फोन करता है तो आप बताते हैं जो आपको लाभ पहुंचेगा, कुछ बेनिफिट होने वाला है, गेन होने वाला है। तो आप बेनिफिट और गेन में मत पड़िए जब वो मोबाइल के थ्रू कॉल आता है। आप फिजिकली मिलिए, जहां से कॉल आ रहा है उसे आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए जो ये सही है गलत है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी जो है वो इस तरह के प्रलोभन में आके अपना लॉस पहुंचा चुके हैं, जब उन्हें बोला जाता है जो आप माल पहुंचा दो, आपको इतना रुपए देना होगा, फिर मैं बाद में आपको पूरा पैसा दे दूंगा। इसमें बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो किसी तरह का लोभ में ना पड़े, लालच में ना पड़े, क्विक गेन में ना पड़े। कोई यदि बताता है जो इस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करो, आपको मतलब 2 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में आपको मल्टीपल टाइम्स उसका पैसा मिल जाएगा, तो इस तरह के ऐप में ना पड़े। या फ्री का जो चीज है, चाहे वो ऐप है, कॉल है, या किसी तरह का चीज है, उसमें ना पड़े। अदरवाइज आपका डेटा वो ले लेता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो।
0: ओके, तो भिवाड़ी, जैसा आपने सुना कि लालच बुरी बला है, वैसे हम ये बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि लालच पे हमें नहीं जाना चाहिए, तो फ्री की कोई भी चीज मिले तो उस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि हमारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वो एक बहुत ही इजी वे बनता जा रहा है साइबर क्राइम करने का, तो उससे हम अपने आधार कार्ड को कैसे बचा सकते हैं, या हम अपनी डिटेल कैसे बचा के रख सकते हैं? क्या बेसिक चीज हम कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड सेफ रहे, मतलब हमारे जो डिटेल्स है हमारी सेफ रहे?
1: देखिए, आधार कार्ड एज सच डायरेक्ट से तो आपका कुछ नहीं होता है।
0: ओके,
1: आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होता है, तो जब भी आप आधार डेटा डालते हैं तो आपको एक ओटीपी आता है उसके ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आप इंश्योर करिए जो आपका ईमेल है, जो आपका मोबाइल फोन है, उसका सिक्योर एक्सेस आपके पास होना चाहिए।
0: Okay.
1: किसी तरह का पिन आप किसी को ना बताएं, अदरवाइज वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
0: ओके, तो फिर से भिवाड़ी, अगर आपने सुना हो, बेसिक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी डिटेल, आपका ओटीपी आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूँ हम सब भिवाड़ी वाले सर के द्वारा दी गई इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और अपने आप को, अपने साथियों को सेफ रखेंगे साइबर फ्रॉड से और साइबर क्राइम से। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्द मिलेंगे। अब भिवाड़ी वालों के लिए मैंने लगा रखे हैं बहुत ही जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले गाने, तो सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। छोड़े जा रहा हूं आपको इन शानदार गानों के साथ।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया, कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
5: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल
9: भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000 और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: शाम के

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

माधुरी दीक्षित का ना ये गाना अपने आप में एक बवाल है, और मैं जानता हूं जैसे ही माधुरी दीक्षित का गाना बजेगा आपके चेहरे की जो स्माइल है ना, ये जो स्माइल है कानों को टच करने लगती है। इतनी पसंद है आपको यार माधुरी दीक्षित।

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24,
1: आपका रेडियो, आपकी धड़कन। और इसी धड़कन को ही तो हम जोड़े रखते हैं जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं। जी हाँ, जब भी हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे मुझे अब पता है कि अब आप घर पहुंचने वाले हैं और भाभी जी ने आपके लिए बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय बना रखी है, चाय के साथ या तो कुकीज या बिस्किट्स या टोस्ट। मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया। अच्छा हाँ, मैंने जब आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि आप लोगों को चाय के साथ क्या पसंद आता है, तो मैं बताना चाहूंगा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल के यही आंसर आए थे कि उन्हें चाय के साथ बिस्किट्स बहुत पसंद है। कोई मारी बिस्किट खाता है, कोई फाइबर वाले बिस्किट खाता है, कोई नॉर्मल ग्लूकोज बिस्किट खाता है, बट हर कोई, मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज वाज कि बिस्किट्स पसंद है और नेक्स्ट वाज कि सिंपल चाय और कुछ नहीं चाहिए साथ में। मैं तो उसी परसेंटेज में हूं जो कहता है कि बस चाय चाहिए, कुछ हो चाहे नहीं हो, हमें तो चाय से मतलब है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब आप घर पहुंचने वाले हैं तो अच्छा, अब मैं जब अपने कलीग से बात कर रहा था, साथी आरजे से, तो वो ना एक शब्द बार बार यूज करते हैं, जैसे जिसको हम तकिया कलाम कहते हैं। कई लोगों का तकिया कलाम होता है, ऐसे नहीं चलता बॉस। कईयों का तकिया कलाम होता है, तुम आदमी है कि हजाम है। ऐसे कई सारे लोगों के बहुत सारे तकिया कलाम होते हैं। क्या आपके भी ऑफिस में या घर में या कोई ऐसा जानने वाला है जिसका कोई तकिया कलाम है, जैसे हर बात पे वो भाई साहब बोलता हो, अरे भाई साहब, अरे सुनो भाई साहब, अरे ये देखो भाई साहब, तो या इन सबको ना तकिया कलाम कहते हैं। तो क्या आपका कोई यूनिक सा, आपका खुद का कोई यूनिक सा तकिया कलाम है, या आपने किसी का यूनिक सा तकिया कलाम सुना है, तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं ना। हम तो बस भिवाड़ी को बताएंगे, जो सबसे यूनिक वाला जो तकिया कलाम होगा ना, वो हम पूरे भिवाड़ी को सुनाएंगे और आपकी आवाज पूरे भिवाड़ी पे प्ले करेंगे ऑन एयर। तो सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। आपके कॉल का मैं वेट कर रहा हूं। इस शो में आपके पसंद के गाने ही बजेंगे, इसीलिए मैं लेके आता हूं 21st सेंचुरी के सभी जोरदार से गाने।

0: बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता, ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
1: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। अब सूरज जब ढल ही चुका है, आप थोड़े थोड़े जाम में फंसने से लग गए हो, क्योंकि हर जगह तो रोड खुदी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं जाम लग रहा होगा। तो यार कॉल करके इतना तो बता दो कहां कहां जाम है, एटलीस्ट हम बाकियों को बता देंगे, वो तो नहीं फंसेंगे, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो। और जब आप ऑफिस से निकल ही चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जनता घर पहुंच चुकी है सेफली, आप अब पीछे रह रहे हो क्योंकि आज आपने बहुत सारे टारगेट अचीव करने का एक साथ सोचा, तो थोड़ा लेट हो गए, चलता है। पर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं ये जरूर ध्यान रख लें, आपके को पायलट ने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भिवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस अब बहुत ज्यादा चालान करने पे लगी हुई है। फालतू की भसड़ का ट्रैफिक जाम नहीं लगता है कि मैं भी घुस जाऊं तुम भी घुस जाओ, इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए और सब स्टक अप हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो सामने ही हमारे रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक ऑफिसर खड़े होते हैं जो आपके लिए फटाफट से चालान बना देंगे, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। अब मेरा समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, शाम का यही वो समय होता है जब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट फिर एक फीलिंग आती है अंदर से कि आज नहीं जाएंगे तो कल कैसे आएंगे। तो कल मिलने की खुशी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, जिन जिनका भी आज बर्थडे था उनको वापस से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, बल्कि आने वाले सभी साल आपके बहुत अच्छे रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको मेरा ये शो कैसा लग रहा है, मैं ये जो पूरे एफर्ट्स मारता हूं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या इतने बढ़िया बढ़िया से गाने आपके लिए लगाता हूं, आपको कुछ भी हमारे साथ शेयर करना है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है या कुछ और जो भी चीज आपको बतानी है, आप हमें कॉल करें 1-843-266-5588। आपके मैसेजेस का, आपके कॉल का, आपके फीडबैक का हम वेट कर रहे होते हैं। सो यश शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द इवनिंग, इट वॉज अ लवली इवनिंग विद यू, टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, सी या, नमस्कार।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
5: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
2: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
9: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
2: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
9: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
10: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
11: 9 6 9 0 7 और 8 5 2 9 8 7 9 0 3 1।
12: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
0: तो आइए कॉफिया, कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे हैं आप? सुन रहे हैं आप इवनिंग टी विद शर्मा जी, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश को ऑन द फ्रीक्वेंसी 90.8 एफएम 24। और गुड इवनिंग भेवाड़ी। जी हाँ, यही वो शाम का समय होता है जब आपकी और मेरी मीटिंग शुरू हो जाती है शाम को 5 से 7 सेम फ्रीक्वेंसी पे। ऑफिस से निकल चुके हो? कितना बढ़िया लगता है ना ऑफिस से निकलने वाली जो फीलिंग होती है ना, मतलब एकदम छुट्टी वाली, बचपन में जो स्कूल वाली फीलिंग होती थी, वो ही फीलिंग याद करके हमेशा निकलना चाहिए कि चलो जो भी भसड़ हुई, जो भी बात हुई ऑफिस में, अगर अच्छी नहीं हुई तो उसको ऑफिस में ही डंप करके अब घर चलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मजाक। मूड फ्रेश करने के लिए सारे गाने मैंने लगा ही रखे हैं आपके लिए, बहुत ही जोरदार वाले, आज के जमाने के सुपरहिट ट्रेंडिंग गाने, सिर्फ वही बजाता हूं मैं, कोई और गाने नहीं बजते हैं इस शो पे। और मेरा कैसा रहा पूरे दिन, मैं क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ? देखो, एक बॉलीवुड रिलेटेड अपडेट है, एक फ्रूट रिलेटेड अपडेट है, एक क्रिकेट रिलेटेड अपडेट है, सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सुनते रहे 90.8 एफएम 24। पर उससे पहले एक और रिक्वेस्ट जो मैं आपसे अभी तक कर रहा था वो अभी भी कॉन्टिन्यू है कि अगर आपके पास या आपके बच्चों के पास, भिवाड़ी में रहने वाले आपके किसी भी जानकार के पास कोई ऐसा टैलेंट है जो वो पूरे भिवाड़ी को दिखाना, बताना, दर्शाना चाहता है, जी हाँ ऐसा कोई भी टैलेंट है, तो आप उसकी एक शॉर्ट वीडियो या वॉइस नोट या फोटो बना के हमें भेज दें ऑन 8432665588। सुनते रहे 90.8 एफएम 24। बहुत ही जोरदार गानों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
10: दूसरी ब्रांच A50, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CB SBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

0: इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टी विद शर्मा जी पे। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप, और अब जब घर के लिए निकल ही चुके हो, बढ़िया धीरे से गाड़ी चला ही रहे हो, थोड़ी बहुत रोड खराब है लेकिन मैनेज कर सकते हो क्योंकि गाने बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं। पर एक बात बताओ, इतनी सारी टेंशन जो आप लेकर के जा रहे हो घर पे, उसको क्यों ना रस्ते में कहीं डंप कर दो या ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑफिस की सारी टेंशन ऑफिस में छोड़ के जाओ, गाना मूड फ्रेश करने के लिए मैंने लगा ही रखा है बहुत बढ़िया वाला। तो क्यों इतना मूड सड़ाया हुआ सा बना रखा है यार, चिल रहो, रिलैक्स रहो। अच्छा चलो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आप ये मूवीज जो आजकल देखते हो, इसमें हम सब ना एक जजमेंट का बहुत बढ़िया तरीका बना हुआ है कि क्या ये मूवी ने 100 करोड़ किए या नहीं किए। कोई सी भी मूवी देख लो, अगर वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के बैरियर को क्रॉस कर रही है तो वो बहुत अच्छी मूवी कही जाती है। बड़ा सिंपल हो चुका है, पहले होता था कि क्रिटिक्स के रिव्यूज देखो, कोई देख के आया हो तो उससे पूछो भाई कैसी मूवी है, तेरे को कैसी लगी, ये सब तरीके होते थे पहले। बट अब ना एक बहुत ही बढ़िया सा बेंचमार्क हो चुका है कि इस क्लब में 100 करोड़ क्लब्स में ये आ चुकी है मूवी या नहीं आई है, या 200 करोड़ क्लब या 300 करोड़ क्लब। अब तो आजकल तो मूवीज भी वैसे पता नहीं कितने 100 करोड़ की बनने लग गई हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत इकोनॉमिक मूवी बनती थी और वो अपने एक डिसेंट सी अर्निंग बॉक्स ऑफिस पे करके चली जाती थी। फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदला और अब कई करोड़ों की बात होने लग गई है। जैसे हम दंगल की बात करें तो उसने बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन किया था वो किया था 1968 करोड़। अब हम दंगल की बात करें तो उसने बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन किया था वो किया था 1968 करोड़, मतलब टोटल 1968 करोड़ उसने कमाए। पठान की बात करें तो 1050 करोड़ कमा चुकी। बजरंगी भाईजान की बात करें तो 918 करोड़। पीके, सुल्तान, संजू, पद्मावत, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कई 100 करोड़ कमा चुकी है। लेकिन पहली कौन सी मूवी थी जो 100 करोड़ क्लब में ज्वाइन कर चुकी थी इंडिया की तरफ से, आपको याद है? क्या आप जानते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है कि 100 करोड़ का जो पहला बेंचमार्क जिसने क्रॉस किया था वो था गजनी, आमिर खान की जो मूवी थी जिसमें वो भूल जाते हैं, और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही डिसेंट सी मूवी थी, उसके गाने बहुत अच्छे थे। पर ऐसा नहीं है कि वो पहली मूवी थी। आप सबको जान के ये आश्चर्य होगा, आप सब बड़े शॉक्ड हो जाओगे ये जान करके कि पहली 100 करोड़ अर्निंग करने वाली मूवी थी डिस्को डांसर, हमारे मिथुन दा की। आहा, ये हमारे वही मिथुन दा और उनका वही गाना आई एम अ डिस्को डांसर, टे। उसी मूवी ने सबसे पहले 100 करोड़ की अर्निंग करी थी बॉक्स ऑफिस में। ओवरऑल अर्निंग जो कलेक्शन वर्ल्ड वाइड उन्होंने किया था वो 100 करोड़ का था। नहीं पता था ना ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, इसीलिए तो मैं आता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो आपको हमें नहीं पता। जैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि आपका दिन कैसा गया क्योंकि आपका कोई कॉल ही नहीं आया। तो कॉल करो हमें ऑन 8432665588, बताओ भैया आपका दिन कैसा रहा है अभी तक। कोई गाना सुनना है तो वो भी बताओ, कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो या कुछ भी भसड़ है, हमारे साथ शेयर करो, हम इसीलिए तो आते हैं स्टूडियोज में। सुनते रहे 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। छोड़े जा रहा हूं इन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद गानों के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चलें?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी

0: उपलब्ध है। लगभग सभी टीपीए कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
1: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
2: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
3: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
2: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
3: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
2: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
4: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टीवी शर्मा जी पे, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। और गर्मियां आ गई हैं, वैसे इनफैक्ट ना मौसम इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि लोगों ने ये स्टेटस लगाना कि यार गर्मियां अभी तक नहीं आ रही है, दिस इज क्लाइमेट चेंज। और इसी के लिए हम सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जितना हो सके उतना पॉल्यूशन कम करें, जितना हो सके उतना एनवायरमेंट को बचाने के स्टेप्स और मेजर्स लें। खैर उन सब चीजों की बात ना करते हुए, गर्मियों में एक चीज जो बहुत अच्छी होती है, जो सबसे ज्यादा पसंद आती है मुझे, वो होता है मैंगो। जी हाँ, आम का फ्रूट, इतना मीठा, इतना प्यारा, एकदम टेस्टी सा। खैर मुझे दशहरी आम ज्यादा पसंद आते हैं, पर किसी को तोतापुरी, किसी को लंगड़ा, किसी को कौन से होते हो, कई कई नाम है यार आम के, मैं भूल जा रहा हूं। बट हर एक बंदे को अलग अलग मैंगो का टेस्ट पसंद आता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा मैंगो कौन सा है? नहीं देखा? एक और बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं ना, आपको बहुत सारी चीजें बताने को, पर आप ही बस मुझे कॉल नहीं करते हो। खैर चलो अब मैं बताता हूं आपको मियाज़ाकी मैंगोज के बारे में। अब ये क्या है? मियाज़ाकी मैंगोज एक्चुअली जापान में सबसे ज्यादा सेल होने वाले मैंगोज हैं, और इसको ऑरेंज सन कहा जाता है या डॉन सन कहा जाता है, इसको कई नाम से जाना जाता है। इस मैंगो की रेट वेरी करती है 3,500 रुपए पर केजी से लेकर के 2,70,000 रुपए पर केजी। जी हाँ, 3,500 रुपीज पर केजी से लेकर के 2,70,000 रुपीज पर केजी की प्राइस। और हम खरीदते हैं 100 रुपए में 1.5 किलो, 100 रुपए में 2 किलो, और इतने मीठे होते हैं। सोचो इन मैंगोज में क्या होता होगा। मुझे नहीं पता क्या होता है क्योंकि मैंने तो कभी खाया नहीं है, बट मुझे यह पता है कि इंडिया में भी एक फार्मर है जो इनको ग्रो करता है। मध्य प्रदेश के मिस्टर परिहार जो हैं वो इन मैंगोज को ग्रो करते हैं अपनी फील्ड में जबलपुर में। और उनको ये सैपलिंग्स पता है, स्ट्रेंजली एक ट्रेन में एक बंदा देके गया था। आप सोचिए इतना बड़ा बिजनेस और वो भी उनको एक ट्रेन में ही मिल गया। ऐसा होता है, हम कहते ना हमें हर जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, हमें हर जगह अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। आपको क्या पता आपके लिए कौन सी चीज कौन से रास्ते से आ जाए। तो वही इनके साथ भी हुआ, इनको ट्रेन में एक बंदे ने वो सैपलिंग्स दी। सैपलिंग्स बोले तो वो छोटी छोटी बर्ड जो ट्री की होती है, जिसको उगाने से पेड़ लग जाता है, तो वो इनको मिले और इन्होंने उसको ग्राउंड किया। ग्राउंड करने के बाद आज वो पेड़ उग चुके हैं, और उनकी सिक्योरिटी में आप बिलीव करें कि इन्होंने रात को 3 सिक्योरिटी गार्ड और 9 डॉग्स रख रखे हैं कि उन मैंगोज को, वो 2 पेड़ जो इन्होंने उगा रखे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 9 कुत्ते और दिन में भी कई सारे गार्ड्स, ताकि पैरट्स ना आए, कोई बर्ड्स ना आए, कोई इंसान ना उनको ले जाए, इतनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब उनके लिए एक्सपोर्ट होते हैं। आप सोचें मैंगोज भी इतने महंगे बिक रहे हैं, कहेंगे कि क्या तू महंगाई की बात कर रहा है। तो महंगाई की बात ना करते हुए आपको बस ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले ऐसा मैंगो खाने का, या कोई भी मैंगो आप खा रहे हो और आप शेयर करना चाहें, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 1-843-266-5588। आई विल बी डिलाइटेड, मैं बहुत खुश होऊंगा आपके साथ उस मैंगो डिनर पे या मैंगो लंच पे या मैंगो इवेंट पे आने के लिए। सुनते रहे 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। छोड़े जा रहा हूं आपको इन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद गानों के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
6: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
7: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
6: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
8: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
9: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
8: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
9: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
8: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
10: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
11: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
10: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
12: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: शाम

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टीवी शर्मा जी पे। और अच्छा, कोई गाना सुनना है या मेरे शो के रिलेटेड आपको कुछ बताना है या कोई भी बात है, प्लीज आप हमें कॉल करें ऑन 8432665588। पूरे दिन का हाल चाल और बवाल बताने की अपनी जो डीलिंग हुई है ना, आप उसको कैसे मिस कर रहे हो यार। सुनते रहे हमें ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

अरिजीत सिंह का ये गाना आपको अच्छा लगता है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप ये बताओ मुझे, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है और सही में कई लोगों के कॉल आते हैं कि ये गाना बहुत प्यारा है। आज के जमाने का ये गाना जो इन्होंने गाया है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा गाना अपना बना ले मुझे, तो वो गाना मैं आपके लिए लेकर के आ गया था। मैं आपके मन की बात जानता हूं, इसलिए मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया से गाने ले आता हूं। और जब मैं मन की बात कर ही रहा हूं, प्रदीप सांगवान वो हैं जो हीलिंग हिमालयाज नाम की एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें वो हिमालयाज पे जितना भी कचरा, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं हम वहां पे अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होता है और कचरा, पेपर बैग्स इधर उधर कहीं पे भी डाल देते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी को एकदम डिस्टर्ब कर देता है, उसको स्पॉइल कर देता है। और अगर वो कचरा कोई ना उठाए ना, तो थोड़े सालों बाद शायद हम वहां जाना ही बंद कर दें। तो प्रदीप सांगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है कि हम हिमालयाज को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, जैसे वो हैं उनको वैसा रख सकते हैं। और वो ये बता रहे थे कि जब से पीएम सर ने उनको काफी टाइम पहले एड्रेस किया था अपने मन की बात में, तो लगभग हर मंथ वो 3 या 5 टन प्लास्टिक वेस्ट, कचरा उठा रहे हैं हिमालय से, वो और उनकी टीम। लोग अब उनके बारे में जानने लग गए हैं, उनको सपोर्ट करने लग गए हैं। देखिए, हम ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने डेली एक्टिविटीज में। प्रदीप सांगवान भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कैसे हैदराबाद की एक 11 साल की बच्ची ने 3 लाइब्रेरी सेटअप कर ली है, ऐसे ही नेबर से या जहां पे भी वो जाती थी वहां से किताबें कलेक्ट कर करके, ताकि फ्री में बच्चे पढ़ सकें, जिनको उन किताबों की जरूरत है वो उनको ले जा सके। बहुत छोटे छोटे कदम से ही ना हम इंडिया को द ग्रेट इंडिया बना सकते हैं, हम भिवाड़ी को द ग्रेट भिवाड़ी बना सकते हैं। और सबसे बेसिक जो कदम होता है ना, वो होता है साफ सफाई। जैसे क्लीन भिवाड़ी, ग्रीन भिवाड़ी जो हमारा स्लोगन है, हम उसको प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप कहीं पे भी कचरा फैलता हुआ देखें, तो जो भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको रिपोर्ट करें। आप जितना कचरा कम कर सकते हैं उतना करें। प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने में जो भी आपके स्टेप्स आप ले सकते हैं, प्लीज आप उनको लें। ये बहुत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट ना एक्चुअली रिसाइक्लेबल उतना ईजिली नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे स्टेप से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कार पूलिंग से आप रिसोर्सेज बचा सकते हैं, आप पेट्रोलियम रिसोर्सेज बचा सकते हैं, आप फ्यूल बचा सकते हैं। तो इतनी सब छोटी छोटी चीजों से ही ना हम अपने नेशन को, अपने स्टेट को, अपने प्लेस को बहुत ही ग्रेट और बेटर प्लेस टू लिव इन बना सकते हैं। खैर, उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे। आप हमें भी बताएं कि आप अपने दिनचर्या में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आप पूरे भिवाड़ी को बताना चाहें, और वो चीज पूरा भिवाड़ी अपने डेली एक्टिविटीज में इंक्लूड करें। सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
4: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
5: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस 3D CT स्कैन 4D अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर इको कार्डियोग्राफी डिजिटल एक्सरे IVP बैरियम HSG डिजिटल OPG DMT ECG EEG PFT मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस अपोजिट अम्बेडकर पार्क धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिक्स नेफ्रोलॉजिस्ट जनरल मेडिसिन जनरल सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपी ब्लड बैंक एल और डायलिसिस सभी बड़े TPA कैशलेस RGHS ECHS ESIC चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
8: बोलिए मुझे जीजा जी।
9: क्या जी?
8: क्या आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
8: क्यों जी?
9: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
8: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप
8: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
9: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप।
8: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
9: हाँ जी हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
8: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
8: बिल्कुल सही।
9: तो आप भी अपनाओ PNG
8: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
10: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
11: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
10: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
11: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल AMC ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूल बाग थाने के पास ही है ये।
10: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
12: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
13: अरे इसमें क्या है?
12: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
13: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
12: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
13: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
12: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
13: इनका एड्रेस क्या है?
12: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं

एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग टी विद शर्मा जी पे, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। और लगभग अब आप घर पहुंचने ही वाले होंगे। मैडम का वो खिलखिलाता हुआ सा चेहरा, वो शाम की बढ़िया सी चाय आपके सामने आने ही वाली होगी। मैडम का वेट कर रहे हैं, फैमिली का वेट कर रहे हैं, बच्चे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले होंगे। और इसी के साथ अब हमारा समय हो चुका है, मेरा समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये 2 घंटे का अपना सफर जो मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करता हूँ। बढ़िया बढ़िया गाने आपके लिए लगा के रखता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, आप लोगों के कॉल आते हैं, आप अपने बारे में, आपके दिन के बारे में हमें बताते हैं। पर इसी के साथ अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, आप इसमें कुछ एडिशन कराना चाहते हैं, आप कुछ अपना गाना बताना चाहते हैं, किसी भी आरजे के बारे में बताना चाहते हैं, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें कॉल करें ऑन 8432665588। आपका कॉल, आपकी सजेशंस, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम ईगरली वेट कर रहे होते हैं उनका। तो प्लीज आप हमें कॉल करें, आप अपनी सारी बातें शेयर करें जो आप करना चाहते हैं, हम बैठे हैं ना आपको यहां सुनने के लिए। और अब मैं चलता हूं यहां से, स्टूडियो से जाने का टाइम अच्छा तो नहीं लगता है, पर क्या करें, आज जाएंगे तभी तो कल आएंगे। तो दिस साइड यश शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द इवनिंग, इट वॉज अ लवली इवनिंग विद यू, बहुत बहुत बहुत मजे आते हैं आप लोगों के साथ। टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, आस्ता ला विस्ता, सिया, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
9: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
10: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
9: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
10: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
11: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी

0: नर्सिंग होम भिवाड़ी।
1: अरे कहाँ जा रही हो?
2: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
1: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
2: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
1: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावरो, हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
0: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
3: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
6: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM, 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: हाँ जी, गुड इवनिंग भिवाड़ी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि जो ये मौसम है ना, मौसम

चलिए बहरहाल मौसम का बदलना तो गजब हो ही गया है। भैया बात कुछ ऐसी कि मौसम ऐसे बदल रहा है कि जैसे बिहार यूपी के लड़के बदल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब, कभी पल में बारिश, पल में धूप, पल में कुछ और, पल में आंधी, पल में तूफान, पल में कुछ, पल में कुछ। मतलब मौसम में बदलता ही जा रहा है, लेकिन इस मौसम से एक फायदा नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत नीचे तक नहीं आ पा रहा है। बारिश तो बहुत हो रही है लेकिन टेम्परेचर गिरने का नाम नहीं ले रहा है। भाई साहब टेम्परेचर नहीं झुकेगा क्योंकि टेम्परेचर है पुष्पा, पुष्पराज। जी हाँ तो भैया चलिए, अब टेम्परेचर झुके या न झुके, लेकिन आप लोगों को टेम्परेचर की जानकारी देना हमारा काम है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि शाम 7 बजे यानी कि जिस टाइम पर हम और आप बात कर रहे हैं, शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे 10 बजे तक की, तो भाई साहब टेम्परेचर रहने वाला है 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक। और वही अगर बात की जाए 11, 12, 1, 2 बजे तक की, तो टेम्परेचर 29 से 28 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुँचेगा। लेकिन अगर बात की जाए मतलब दोपहर में जो टेम्परेचर था वो 34 से लेकर के 33 सेल्सियस और उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सुबह की जो बात की जाए वो लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जा खड़ा हुआ था। मतलब छाव तो है, ये छाव है या धूप सजन कैसे पता है। ऐसा कुछ गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए याद आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर याद आ रहा है और टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। चलिए ये थी टेम्परेचर वाली बात। फिलहाल टेम्परेचर 33 से 30 और रात में 28, 29, 27 तक जा पहुंचता है। मतलब टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कमी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अब तो ठंडक आने वाली है। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, यश यू है और यू आया लेकर, और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बात। फिलहाल यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा इस गाने को और हाँ सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो नाइट।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
6: क्या कर रही है?
7: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
6: फिर से? अभी तो गई थी।
7: हाँ, फिर से जाना है।
6: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
7: गाड़ी नॉट इन बजट।
6: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
7: गांधी मोटर्स?
6: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
7: तो कब चले?
6: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
8: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
9: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
10: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
11: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
12: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
11: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
12: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
11: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
4: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: हाँ जी, गुड इवनिंग भवाड़ी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका रेडियो दोस्त यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बातों को लेकर आता है, और फिलहाल तो हम बात करेंगे ट्रैफिक वाली। जी हाँ, आइए जरा सा जान लेते हैं ट्रैफिक वाली बातों को। दोस्तों, जिंदगी की रफ्तार जितनी जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सुरक्षित रहना। सड़क पर जल्दबाजी अक्सर हमें मंजिल तक नहीं बल्कि मुसीबत तक पहुंचाती है। तो बस याद रखिए, ट्रैफिक सिग्नल कोई सुझाव नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का नियम है। लाल बत्ती पर रुकिए, पीली बत्ती पर सावधान रहिए और हरी बत्ती पर ही आगे बढ़िए। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने और कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। और इसी में एक और चीज बहुत ध्यान रखने वाली ये है कि मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी हमें बिल्कुल नहीं चलाना है। ओवर स्पीड या फिर गलत दिशा में वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि इससे न सिर्फ कानून का उल्लंघन होता है बल्कि किसी की जिंदगी भी छीनी जा सकती है। अगर हम सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो सड़कें सुरक्षित होंगी और हर परिवार अपने अपनों को सुरक्षित घर लौटते हुए देख पाएगा। तो आइए आज एक वादा करते हैं, नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित सफर और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। चलिए, फिलहाल मैं था आपका दोस्त आरजे यश, ऐसी ढेर सारी बातों को लेकर आता रहूंगा। आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 34।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
2: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड, भिवाड़ी। जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना।

0: आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8882423823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड, नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: अच्छा तो हम आ गए हैं और अब क्या करेंगे? अब मेरे पास एक प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है, बस वही गाना प्ले करेंगे। हाँ जी नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, याद है कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब मुझे तो आना ही था, इसलिए भी आना था क्योंकि मेरे पास बड़ी प्यारी सी कॉल आई है। जी हाँ, ये कॉल आज नहीं बल्कि कल मेरे पास आई थी, लेकिन गाना बड़ा ही प्यारा सा है, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। और उन्होंने कहा है कि प्लीज प्लीज प्लीज मैंने आज आपको कॉल कर दिया है, कल मुझे कंपनी जाना होगा और मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरा गाना प्ले कर दीजिए। चलिए भाई साहब, जब आपने इतनी प्यार मोहब्बत और उम्मीद के साथ कॉल किया ही है तो भाई साहब यश आपकी बातों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी हाँ बिल्कुल भाई साहब, याद मुझे रहता है। जी हाँ, जिनकी ये रिक्वेस्ट आई है उनका नाम है मनोज कुमार जी। तो मनोज कुमार जी का गाना जो है बड़ा ही प्यारा सा गाना है, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। गाना कुछ ऐसा है कि जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना, क्या बात है यार। मतलब गाना ऐसे नहीं लग रहा सुन के, टाइटल ऐसे नहीं लग रहा कि यार एकदम ही मनोज कुमार जी ने माहौल ही बना दिया है कि जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना। मतलब वो काम करते हैं और भिवाड़ी के नहीं है, कहीं और से हैं, तो वो आते हैं जब घर से तो उनका शायद ये मानना है कि घर वाले उनसे ऐसे कहते हैं, उनकी बीवी ऐसा उनसे कहती है कि जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना। चले मनोज कुमार जी, मुझे तो नहीं पता आप शादीशुदा हैं, चूंकि ये मैंने आपसे नहीं पूछा है। अगर नहीं है तो हो जाएंगे, अगर है तो ये गाना बड़ा अच्छा चॉइस किया आपने। चले बहरहाल मनोज कुमार जी, आपके लिए ये प्यारा सा गाना मुबारक है और आप एंजॉय कीजिए इस गाने को। और जो आपकी ये फरमाइश है उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था, तो चलिए इस प्यारे से गाने को एंजॉय कीजिएगा मनोज कुमार जी आप भी, और हाँ मेरी भिवाड़ी की प्यारी सी आवाम आप भी, और जो लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब भी। चलिए ये गाना बड़ा ही प्यारा सा है, बड़ा ही खूबसूरत सा है, जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना, एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। बस यश यू है और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मसाक वाली बात है, फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस गाने को।

0: लेकर के मैं आ भी चुका हूँ। और हाँ, यही कहाँ रुकूंगा यार, आज बहुत ढेर सारी भिवाड़ी शहर से जुड़ी फुर्त बातें होंगी, भिवाड़ी शहर के बाहर से जुड़ी बातें होंगी, बहुत ढेर सारी न्यूज अपडेट्स भी आपको दूंगा, बहुत ही ढेर सारी बातें आपसे करूंगा, साथ में आपको चुटकुले भी सुनाऊंगा। ताकि
1: अंकल वो क्या है ना कि सड़क पर ना बहुत ढेर सारा ट्रैफिक जाम रहता है ना, तो टाइम पास भी तो जरूरी है ना। अरे हाँ अंकल,
0: हाँ चिंटू भाई बिल्कुल सही कह रहा हो। तो दोस्तों बहुत ढेर सारे चुटकुले भी आएंगे, चिंटू भाई आपको चुटकुले सुनाएंगे। और साथ में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज का शो बड़ा ही खास होने वाला है, बिंदास होने वाला है, चटपटा सा होने वाला है। तो बस भाई साहब कहीं मत जाइए, एकदम ही यहाँ पर रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए। और हाँ, यही नहीं रुकना है भाई साहब, सीट बेल्ट लगा करके कमर कस लीजिए। कमर कस लीजिए मतलब ये तो प्रोटेस्ट का साइड इफेक्ट चला भाई साहब, एक्शन का रिएक्शन है। कुछ भी कसवा रहे हैं। चलिए बहरहाल आपको कमर नहीं कसना है, आपको ट्यून करके रखना है अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.FM 24 और इस रेडियो पर जब तक यश है तब तक आपको हंसी मजाक मिलते रहेंगे। चलिए मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। फिलहाल तो मेरे गले में है खराश और गला हो रहा है खराब, वाह बिना राइमिंग के राइमिंग। चलिए एंजॉय कीजिएगा इस गाने को, मैं फिर से खराश भरे गले को लेकर आता हूँ और बहुत ढेर सारी बातें करूंगा। चलिए एंजॉय कीजिएगा और हाँ कहीं मजा ही, सुनते रहे अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.FM

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001।

0: 1786 पे या फिर 8432665588 पे।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। जी, मैं भूलने नहीं दूंगा आपको, और भूल मैं भी नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है और मैं भी जानता हूं कि ना आप मुझसे दूर रह सकते हैं ना मैं आपसे दूर रह सकता हूं। इसीलिए आता हूं रोज आपके पास इसी समय पर, जी हाँ, यानी कि 90.8 FM 24 के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ करने गुफ्तगू और बहुत सारी बातें अंदाजे बयां में करेंगे, अपने अपने अंदाज पेश, यानी कि आप अपने अंदाज पेश करेंगे और मैं अपने अंदाज पेश करूंगा। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज, सुनते हैं एक बेहतरीन सी गजल और उसके बाद फिर हम करेंगे बहुत सारी बातें। जी, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। सुनते हैं गजल अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब की दिलकश आवाज में, और बिल्कुल वही लाइनें

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे डीआर टीएमटी ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
14: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: दोस्त बिना जिंदगी वीरान होती है, अकेले हर राह सुनसान होती है। जीवन में एक प्यारे से दोस्त का होना जरूरी है, क्योंकि उसकी दुआ से ही हर मुश्किल आसान होती है। और मुझे पता है कि मेरे दोस्तों की दुआएं हमेशा मेरे साथ चलती हैं। आ चुका हूं मैं वापस आपके पास, यानी आपका हम सफ़र अनुराग, और प्रोग्राम आप जानते हैं, आपका अपना अंदाज़े बयां। जी, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जो फीलिंग्स की बात हम करते हैं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे साथ चलती हैं। कितना कुछ आपसे मैं रोज़ आपकी बातें सुनता हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि जब जब मैं आपसे रूबरू होता हूँ, बहुत से ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर बात करना लगता है कि लाजमी है। और मैं आपसे कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आप मुझसे करना चाहते हैं अपने जज्बात को शेयर, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये है अंदाज़े बयां और आपके अंदाज सुनने के लिए मैं बिल्कुल बेकरार हूँ। नंबर है 8432665588। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
15: हुजूर आप कभी

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
4: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
4: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8842322823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: क्या कर रही है?
7: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
6: फिर से? अभी तो गई थी।
7: हाँ, फिर से जाना है।
6: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
7: गाड़ी नॉट इन बजट।
6: अरे गांधी मोटर्स है ना।
7: गांधी मोटर्स?
6: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
7: तो कब चलें?
6: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
8: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
9: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
10: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
11: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
11: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
12: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
0: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। अब बात करूंगा मैं आपके मैसेजेस की, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैसेज लेता हूँ अमृता सोनी जी का। जी अमृता सोनी जी हैं, सुलेमान अहमद जी हैं, विवेक कुमार जी हैं, आदिल अशरफ जी हैं, अली हैदर साहब हैं, जो कहते हैं कि अंदाज़े बयां में हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनका कहना है कि गज़लें जब आती हैं और वक्त ऐसा होता है कि शाम को मन होता है कि हाँ हम रात में गज़ल सुने, और एक सूदिंग सा माहौल बनता है। जी बिल्कुल आपका कहना सही है, और आप सबके लिए मैं रोज़ ये प्रोग्राम लाता भी हूँ और लाता रहूँगा भी। और आप भी हमें मैसेज करें, अपने जज्बातों को शेयर करें 8432665588 पे। जी 8432665588 पे। और मैं यहाँ पे कुछ नाम और भी लेना चाहूँगा। ये हैं यासिर खान साहब, अमरिंदर बोरा जी हैं, वंदना राठौर

बिल्कुल दुखी ना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सूदिंग गजल सुने, आपका माइंड फ्रेश बिल्कुल हो जाएगा और आप एंजॉय करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। सुनिए, आइए, बहुत बेहतरीन कलाम मैं आपको सुनवा रहा हूँ, और आप अपना चैनल ट्यून करके रखें 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। जी, मैं भूलने नहीं दूंगा आपको और भूल मैं भी नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है और मैं भी जानता हूं कि ना आप मुझसे दूर रह सकते हैं ना मैं आपसे दूर रह सकता हूं। इसीलिए आता हूं रोज आपके पास इसी समय पर, जी हाँ, यानी कि 90.8 FM 24 के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ करने गुफ्तगू और बहुत सारी बातें अंदाजे बयां में करेंगे, अपने अपने अंदाज पेश, यानी कि आप अपने अंदाज पेश करेंगे और मैं अपने अंदाज पेश करूंगा। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज, सुनते हैं एक बेहतरीन सी गजल और उसके बाद फिर हम करेंगे बहुत सारी बातें। जी, सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। सुनते हैं गजल अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब की दिलकश आवाज में और बिल्कुल वही लाइनें

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
5: तो आइए कॉफिया, कॉफिया गेट टुगेदर में, जहाँ हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060। भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8600

0: स्कूल 8058304500।
1: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
4: दोस्त बिना जिंदगी वीरान होती है, अकेले हर राह सुनसान होती है। जीवन में एक प्यारे से दोस्त का होना जरूरी है, क्योंकि उसकी दुआ से ही हर मुश्किल आसान होती है। और मुझे पता है कि मेरे दोस्तों की दुआएं हमेशा मेरे साथ चलती हैं। आ चुका हूं मैं वापस आपके पास, यानी आपका हम सफ़र अनुराग। और प्रोग्राम आप जानते हैं, आपका अपना अंदाजे बयां। जी, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जो फीलिंग्स की बात हम करते हैं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे साथ चलती हैं। कितना कुछ आपसे मैं रोज़ आपकी बातें सुनता हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जब जब मैं आपसे रूबरू होता हूँ, बहुत से ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर बात करना लगता है कि लाजमी है। और मैं आपसे कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आप मुझसे करना चाहते हैं अपने जज्बात को शेयर, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये है अंदाज़े बयां और आपके अंदाज़ सुनने के लिए मैं बिल्कुल बेकरार हूँ। नंबर है 8432665588। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: हुजूर आपको कभी

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
4: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
4: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: क्या कर रही है?
7: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
6: फिर से? अभी तो गई थी।
7: हाँ, फिर से जाना है।
6: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
7: गाड़ी नॉट इन बजट।
6: अरे गांधी मोटर्स है ना।
7: गांधी मोटर्स?
6: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
7: तो कब चले?
6: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
8: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
9: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
10: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
11: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
12: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
11: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
12: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
13: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
0: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। अब बात करूंगा मैं आपके मैसेजेस की, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैसेज लेता हूँ अमृता सोनी जी का। जी अमृता सोनी जी हैं, सुलेमान अहमद जी हैं, विवेक कुमार जी हैं, आदिल अशरफ जी हैं, अली हैदर साहब हैं, जो कहते हैं कि अंदाज़े बयां में हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनका कहना है कि गज़लें जब आती हैं और वक्त ऐसा होता है कि शाम को मन होता है कि हाँ हम रात में गज़ल सुने, और एक सूदिंग सा माहौल बनता है। जी बिल्कुल आपका कहना सही है, और आप सबके लिए मैं रोज़ ये प्रोग्राम लाता भी हूँ और लाता रहूँगा भी। और आप भी हमें मैसेज करें, अपने जज्बातों को शेयर करें 8432665588 पे। जी 8432665588 पे। और मैं यहाँ पे कुछ नाम और भी लेना चाहूँगा। ये हैं यासिर खान साहब, अमरिंदर बोरा जी हैं, वंदना राठौर, सुमित कौल, विवेक कुमार केनिया। और इनके साथ एक और मैसेज है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, यानी कि विपुल कुमार जी का। विपुल जी कहते हैं कि सर धोखा ही धोखा है इस मोहब्बत में, आप हमें गज़ल सुनाएं धोखे पे। तो साहब धोखा ही धोखा चाहे जितना भी रहे, लेकिन आप ये मान के चलें कि जहाँ इस दुनिया में धोखेबाज हैं तो वहाँ पे ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जिनकी वजह से मैं तो कहूँगा ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये धरती टिकी हुई है। और आप बिल्कुल दुखी ना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सूदिंग गज़ल सुने, आपका माइंड फ्रेश बिल्कुल हो जाएगा और आप एंजॉय करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। सुनिए आइए, बहुत बेहतरीन कलाम मैं आपको सुनवा रहा हूँ, और आप अपना चैनल ट्यून करके रखें 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
4: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
6: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
6: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
9: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
8: बोल लल्लनको CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
10: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
11: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
12: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
13: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
14: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
14: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। जी हाँ, क्योंकि बात होती है जब यहाँ अंदाजे बयां की और मैं और आप होते हैं साथ में, तो जो आपके अंदाज रहते हैं उनका तो क्या कहना। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने मैसेजेस की आपको बात बताई कि जितने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को, क्योंकि मैं जब देखता हूं मेरा कोई दोस्त मायूस हो गया है तो वास्तव में मुझे चैन नहीं आता, क्योंकि मायूसी तो होनी ही नहीं चाहिए। और मैं ये कहूँगा क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसके मायने ही यही है कि वक्त बदल जाता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदल जाती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता दोस्तों के साथ, बस दोस्त बदल जाते हैं वक्त के साथ। तो आप बिल्कुल भी अपने मन में अपने दिल में बिल्कुल कोई मलाल ना रखें, आप खुश रहें और उसके साथ साथ 90.8 FM के साथ आप अपने जज्बात ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम करेंगे उन पे और चर्चा। और कोशिश यही है हमारी कि जब भी आपके साथ रूबरू हों आपके लिए कुछ अच्छी बातें, यानी कि आपके साथ कुछ ऐसे जज्बात बयां हों जिससे कि इस अंदाज़े बयां का अंदाज़ जैसा हमेशा निराला रहता है वैसा ही बना रहे। आइए सुनते हैं एक बेहतरीन सा कलाम, उसके बाद करेंगे आगे गुफ्तगु। सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता। अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
7: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
7: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
7: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
7: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
7: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक, चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
11: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
12: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
11: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
12: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
0: बेशक थोड़ा इंतजार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हंसी यार मिला मुझको। न रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, तेरी दोस्ती में वो प्यार मिला हमको। वेलकम बैक टू 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। आपको पता ही है कि कौन सा प्रोग्राम है, क्योंकि ये है आपका अपना प्रोग्राम, यानी कि आपकी आवाज सुनना चाह रहा था जी, अंदाजे बया। और अंदाजे बया में तो अंदाज हमारे आपके चलते ही। हाँ, एक बात मैं आपसे फिर कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप में अगर कोई फन है, आप फनकार हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप लिखते बहुत अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छा है, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, या आपके अंदर कोई भी ऐसी कला है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि तुरंत हमें व्हाट्सएप करें 8432665588 पे, जिससे कि आपको मिलने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म 90.8 FM 24 की तरफ से। लेकिन आप अपने सारे जो भी लिंक्स हैं वो आप हमें सेंड करें, आप हमें भेजें, जिससे कि हमारे ज्यूरी मेंबर्स उसको चेक करें। और अगर आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है और आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा सबके दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो इससे बेहतरीन मंच आपके लिए नहीं है, क्योंकि 90.8 FM 24 जो कि है आपका रेडियो और आपकी ही धड़कन। तो आइए सुनते हैं एक बेहतरीन सा कलाम और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू यूं ही जारी रहेगी। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं भिवाड़ी में एक ऐसी जगह जहां मिले शानदार कॉफी, लाजवाब स्वाद और सुकून भरा माहौल?
3: तो आइए कॉफिया गेट टुगेदर में, जहां हर कप में है प्यार और हर मुलाकात बनती है यादगार। पता अलवर बायपास रोड भिवाड़ी।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी

0: 9838304000 पर।
1: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
2: बोलिए मुझे जीजा जी।
3: क्या जी?
2: क्या आपने लगाई PNG?
3: हाँ जी।
2: क्यों जी?
3: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
2: और सेफ्टी
3: की चिंता स्टॉप,
2: और गैस खत्म हुई तो
3: ये टेंशन भी स्टॉप।
2: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
3: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
2: हाँ जी,
3: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
2: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
3: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
2: बिल्कुल सही।
3: तो आप भी अपनाओ PNG
2: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
4: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
5: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
4: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
5: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
4: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
6: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
7: अरे इसमें क्या है?
6: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
7: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
6: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
7: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
6: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
7: इनका एड्रेस क्या है?
6: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
10: वेलकम बैक टू 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। और मैं बताऊं आपको कि प्रोग्राम है आपका अपना जाना पहचाना, यानी अंदाजे बयां। और अंदाजे बयां में करते हैं हम अपने अंदाजों को बयां, यानी आपके अंदाज और मेरे अंदाज। और हुजूर क्या करें, ये घड़ी बड़ी बेरहम हो गई है। जब मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, आपको अपने दोस्तों से अभी करनी है और बातचीत, लेकिन ये कह देती है कि अनुराग वक्त हो चला है विदा लेने का। कोई बात नहीं, अफसोस हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कल फिर आऊँगा आपसे करने यूं ही गुफ्तगू। और आप सुनते रहिए 90.8 FM 24। आपको फिर बताता हूँ नंबर 8432665588 पे जी भेजें अपने जज्बात, बांटें हमारे साथ अपनी खुशियाँ भी, अपने गम भी। आता हूँ रोज़ मैं रात को आपके पास, आपके दिल में रहने के लिए। जी सुनते रहिए अनुराग को 90.8 FM 24 पे, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: रोज रात को 9 बजे
1: ओनली ऑन 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
6: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
8: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
9: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
8: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
9: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
10: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।